0: हेलो,
1: हेलो
0: तू कहना नान्दे मेरे रे ये है
1: रे मुकाते हैं का मुको का ना इसी मरी इसी तुम
0: तुमरू आव मुरहु कने हिसाब तो
1: ये वो लियो इतना मोहन चारी बुत तुम भाई क्या नहीं तो संप्रो
0: तुरु को तुरा कौन बने जा
1: तुम ये नमो फांदी मोहन आंचे अरी बुत तुम भाई ने खांडी किसूलेरे जाचे
0: आजोर हो किरे है
1: Azolo kisa watonga mugasenga. Sawa sawa ngai kuri samwe sana mwe penda vipuri tayi kuro kisa watonzi.